0: का भाई रुइया आपेरा हम्मा ते नामे ते वहीता रंगी मुखो पुना बताते माँ को यारा आते हाउ रचु ताही आते वहाँ रों नौकी माय आयु है ते तोरु कराका में ताता हाउ रचु अरु अ प्याप है ओ किरुंगे ते नहीं आही आही ताई ते रु ते कह माँ ताही मै रु अ मनो रु ते कह माँ उनो
1: ते वहाँ रों किते आओ मारा
2: ते वहाँ रों with him
3: Fakarua mai, kwa tai mai aha kariha kina kina.
4: Morena nam, siawa ye mai deju week.
5: Yeah, morena jai.
3: Mai te papa kainga, ki te papa tākaro.
4: Those are the days nams when we were getting a $20 people voucher.
3: Ha kina kina, e whakakaha I te whānau, I te iwi katoa.
6: If you lost the bet, you'd have to do a deer. Had to walk down Jesmond Street in a bloody netball dress. I had to...